0: तर मुद्दा जाना उनको जन्ने कच्चर बल बल देते मुद्दर हुल्चम मंचर वाल्दी ने वो साईशंगी की शिरंचन नंग तंदा कत्तो उत्तर बल ले बल साईशंग अदा शिरंचन चलर कत्त उच्चर ले को यादर ले के मुद्दर ले को हुल्ले गत्तर पुष्पन वाल को भेदो
1: खेमिंग कर जा हो
0: भल्लग दर नंग तंदा मंचर दबर कंपन उगे बल जा वंग नंगी दे मंग बल Kesendirian batera itu asalnya otawal wangamuk dan aljaga itu wangamuk dan wangangi ini umur kasan dan cipta itu alung dia dan barbun cirit erham sih jekut cakwal jaga itu kerjakan dengan payah lecuk dia na